0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এতিয়া ছয় বজাৰ পৰা ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই নবীন সক্সেনা। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: बीएपीएस के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्ट

0: स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured are being provided with all necessary medical assistance. The building was being used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Delhi Mayor Pravesh Wahi has said that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. He said strict action will also be taken against officials found responsible, including their immediate dismissal. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are celebrating this year as the India-France year of innovation.
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां अर्थात हमारे मन समान हो हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: Floods have affected normal life in several parts of Bihar with major rivers including the Ganga, Gandak and Kosi flowing above the danger mark. In view of the rising water level of the Ganga, authorities are maintaining heightened vigilance in downstream areas. The river had crossed the highest flood level at several ghats in Patna. In Uttar Pradesh, flood conditions remain critical with 24 districts affected and several rivers still in spate. 5 people have died in rain-related incidents. Meanwhile, the India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and northeastern parts of the country during the next 2 days. Iran's top security official has announced that a new restricted zone will be

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: आ, आ, आ, ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी
3: और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी

0: अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी। जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
6: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
7: देश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक,

0: कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331048, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद सर फिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: जिगी जागी जाऊं, भोगी जाऊं, जिगी जागी जाऊं। जो तो घरे बहु बेटे पीछे पोरे चोले गो, जो बोले रो अंगड़ा उड़े गे ना बोले गो। जिगी जागी जाऊं, भोगी जाऊं, जिगी जागी जाऊं। जिगी जागी जाऊं, भोगी जाऊं, जिगी जागी जाऊं। जिगी जागी जाऊं, भोगी जाऊं, जिगी जागी जाऊं।
1: अरे जिया मोर लाला के और जौवन कोलोसी पानी झल के, अरे जिया मोर लाला के।
2: देवी छबिर परा गीत एटी शुनाबले लैछु समर হাজৰিকা আৰু মালবিকা বৰাৰ কণ্ঠত, গীতিকাৰ আমিনুল হক।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি আৰু 12:05ত ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से

एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। सैनिक भाइयों, मैं त्रिनेनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में।

हम अब से कुछ ही देर में शुरू करेंगे मधु गीतों का मनभावन सफर, लेकिन इससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही क्षणों में हम लेकर आएंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम संगीत माधुरी, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के बाद 1:10 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम गीत माला। 1:40 पर कार्यक्रम वतन के तराने। दिन के 2 में डे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के बाद दिन के 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चैने का। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना है टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह और चिन्मोय श्रीपाद के आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना है गैंगस्टर फिल्म से केके के आवाज में।

ये आकाशवाणी घाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का गीत। आइए सुनते हैं ये गीत पहेली फिल्म से। संगीत है एमएम करीम के और बोल है गुलजार के और साथ ही आवाज है सोनू निगम और श्रेय घोषाल की।

हमारा अगला कार्यक्रम है संगीत माधुरी, लेकिन कार्यक्रम के शुरू होने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल शनिवार है, रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आगाज होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर गीत अपना धन पर आए, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। 1:40 पर कार्यक्रम पनघर। दिन के 2 में डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के बाद 2:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3:00। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत माधुरी। कार्यक्रम का पहला गीत है अमरापली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत माथुरी। कार्यक्रम का अगला गीत है फिर वो दिल लाया हूँ फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, हम आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक हमारा ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का अगला गाना है रात और दिन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

साहब मिले, मिलते ही वो कहने लगे, ओह माय डार्लिंग आई लव यू। मैं बोली, पर मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। तो हंस के बोले, वैसे मैंने भी आपको कहाँ देखा है, मैंने तो आपके बैंक बैलेंस को देखा है मैडम, क्योंकि मैं बैंक मैनेजर हूँ।

ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 135 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे चुनिंदा देशभक्ति मूलक गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है मेरे वतन के लोगों फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में।

अब हम सुनने जा रहे हैं ये अगला गीत द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से सोनू निगम और मनमोहन वारिस के आवाजों में।

0: Arina Sabalenka defeated American Taylor Townsend 6-4-6-3 at Arthur Ashe Stadium. Sabalenka will face Czech player Linda Noskova in the quarterfinals tomorrow. In another round of 16 clash, Spain's Carlos Alcaraz thrashed American Tommy Paul in the pre-quarterfinals at Arthur Ashe Stadium. Benchmark domestic equity indices extended losses during the afternoon session today. The Sensex declined 467 points to 76,049, while the Nifty fell 138 points to 23,760 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
2: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्यिक कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध हैं। डॉक्टर जयशंकर ने ये

0: बाद आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री ज़ेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
1: Ours is a very trusted relationship.
2: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
1: Ratification likely in the coming future.
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तराश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक के अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
4: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
5: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
6: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है, और डिटेक्शन सिस्टम इसमें केनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु

0: जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभाव काम के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
4: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंट को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और

0: न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123104812371717106 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में अरेना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका के तरफ। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उन फिल्मों में से एक की जिसने भारतीय दर्शकों को अपना देसी सुपर हीरो दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2006 में रिलीज हुई फिल्म कृष की। ये फिल्म राकेश रोशन द्वारा निर्मित की गई।

हिंदी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म रही जिसमें रोमांस था, परिवार था, विज्ञान था, भावनाएं थी और इनके बीच था एक ऐसा नायक जो आम इंसान जैसा दिखता था लेकिन क्षमताएं असाधारण थी।

फिल्म में ऋतिक रोशन ने कृष्णा और उसके सुपर हीरो के रूप क्रिश दोनों किरदार निभाए। प्रियंका चोपड़ा, रेखा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर, जहां सेहत से जुड़ी हर उलझन का मिलता है सटीक समाधान। आज इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त काजल। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। और आज के हमारे इस खास फोन इन प्रोग्राम का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशन, यानी हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है। आज के इस खास विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल खरे, जो नई दिल्ली के RML अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में प्रोफेसर, कंसल्टेंट और हेड हैं। डॉक्टर राहुल, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें आपसे आज जानेंगे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अगर आपके मन में भी है इस विषय को लेकर कोई सवाल और आप चाहते हैं सही सलाह, तो बस फोन उठाइए और हमसे सीधे बात कीजिए। हमारा फोन नंबर है 011-234-2102, माफ कीजिएगा 011-234-2108। और हमारा दूसरा नंबर है 011-234-2102। और हाँ, आप व्हाट्सएप के जरिए भी रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं इस नंबर पर, जो है 9868107070। तो चलिए शुरू करते हैं सेहत का सफर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के साथ, जिसमें आज का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशन, यानी हड्डियों के बेहतर पोषण के लिए क्या करें। हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं, जिससे हम सीधे खड़े हो पाते हैं। तो जब हड्डी शरीर में इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। तो डॉक्टर, आपसे सबसे पहले ये जानेंगे कि हड्डियों की मजबूती के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स क्या हैं।
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये बहुत ही ज़रूरी है हम सबको जानना, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं हड्डियाँ हमारे शरीर के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है उनका न्यूट्रिशन, अगर हड्डियों को न्यूट्रिशन ही नहीं पहुँचेगा, हड्डियों तक ताकत ही नहीं पहुँचेगी, तो हड्डियाँ मजबूत नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम आगे और ज़्यादा चर्चा करेंगे, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, और अगर कोई भी अगर आपको तकलीफ होती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहब, अभी तुरंत एक मैसेज भी आ गया है, जिसमें एक श्रोता है हमारे जो पूछ रहे हैं कि हेलो डॉक्टर राहुल, आई वांट टू फाइंड आउट हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ माय बोन्स सिंस आई एम मेनोपॉजल एंड आई एम ए थायराइड पेशेंट एज वेल।
2: जी हाँ, इन्होंने लिखा है, इन महिला ने, कि मेनोपॉजल हैं और थायराइड की भी बीमारी है। जी। तो जब हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होती हैं तो उसके 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम पे, जिसको हम बोलते

0: ते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, और एक बुढ़ापे में जाके जब हड्डियां महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की कमज़ोर हो जाती हैं, तो इनको क्योंकि मेनोपॉज अगर हो गया है और थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो मेनोपॉज में जब मेनोपॉज होता है महिलाओं में, तो जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं उनकी कमी होने के कारण की वजह से हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लग जाता है, और जब हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लग जाता है तो धीरे धीरे करके हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, और इसी को पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। थायराइड की अगर पेशेंट है तो उसमें भी क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो उससे भी हड्डियों पे और जोड़ों पे प्रभाव पड़ता है। अगर वज़न बढ़ जाएगा तो जोड़ों पे प्रभाव पड़ेगा, आगे जाके जोड़ जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बोन्स का ध्यान रखें अगर मेनोपॉज हो गया है, थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपना चेकअप कराएं अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी, अगर नहीं है तो भी एक बार ज़रूर जाके क्या खाना पीना है और क्या टेस्ट अभी वो करवा सकती हैं इस उम्र में, ताकि आगे जाके उनको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो।
1: डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, आप कौन हैं बताइए, अपना नाम बताएं।
2: जी, सभी को मेरा प्यार नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी, मैं ग्राम नांगोला से बात कर रहा हूं।
1: जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है?
2: जी जी जी सर, मेरा सवाल यह है कि हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए अपने खान पान में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए?
0: अमित जी, आपकी उम्र कितनी है?
2: सर मेरी उम्र 36 साल है।
0: 36 साल की उम्र है, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय आपके लिए है कि आप खान पान, आपने पूछा है हड्डियों के लिए, तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे हड्डियों के लिए। और कैल्शियम, अगर आप, सभी को पता है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, केले, अंडे, इन सब चीज़ों से आपको कैल्शियम खूब अच्छी मात्रा में मिल जाता है। विटामिन डी आपको थोड़ा कम मिलता है, सी फूड वगैरह में मिलता है, अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है तो मिल सकता है, नहीं तो प्राकृतिक रूप में सनलाइट एक्सपोजर से हमें विटामिन डी हमारा शरीर खुद ही बना लेता है, हमारी स्किन बना लेती है, तो वो वहाँ से मिल जाता है। और प्रोटीन्स के लिए आपको अपने खाने में, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आसान है, अगर वेजिटेरियन है तो भी आप खूब सारी दालें, सोयाबीन, इन सब चीज़ों की, मिलेट्स, इन सब चीज़ों की अगर खाने में प्रयोग करेंगे तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी।
1: सर, एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है पारुल का, जो गुड़गांव से हैं और पूछ रही हैं कि आई वांट टू नो व्हाट डाइट एंड व्हाट प्रिकॉशंस शुड वुमेन इन देयर 50s शुड टेक।
0: ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि महिलाएं 50 साल की उम्र में होती हैं तो मेनोपॉज या तो शुरू हो गया होता है या चल रहा होता है, तो इस उम्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे पहले भी मैंने बताया, कि इनको अपना प्राइमरीली एक विटामिन डी का टेस्ट करा लेना चाहिए, एक बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, और इनको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए खूब, अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी का एक्सपोजर अगर कम है तो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, और प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, और थोड़ा सा स्ट्रेनवस एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी सी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सिर्फ टहलना, वॉकिंग इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर आपको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है तो आपको अपनी मसल्स भी मजबूत करनी पड़ेंगी, और उस वो सिर्फ आपको थोड़ा मसल्स को स्ट्रेस देकर ही हो पाता है, तो वेट बेयरिंग थोड़ा हल्के फुल्के वेट से शुरुआत कर सकते हैं, और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करने से मसल स्ट्रांग हो जाएंगी, तो इन टर्न हड्डियाँ भी स्ट्रांग हो जाएंगी।
1: ओ डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बात बताई, और क्यों ना एक गाना सुन लें?
0: जी हाँ, बिल्कुल।

0: डॉक्टर साहब, गाना आपको कैसा लगा?
1: बहुत ही बढ़िया गाना था।
0: तो आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जिसमें आज का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशन, और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है, ये आयुष हैं अशोक नगर दिल्ली से पूछ रहे हैं कि विटामिन डी इंडिया के लोगों को की कितनी होनी चाहिए, और इसके वैल्यूज क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं क्या, और बोन्स डेंसिटी का पता कैसे लगाया जाए?
1: विटामिन डी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो वो हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। हम चाहे जितना मर्जी कैल्शियम डेट्राइट्स रिच डाइट ले लें या हम कैल्शियम की टैबलेट्स खा लें, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी होगी तो वो कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग लैब्स के अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। कुछ लैब्स में 30 से ज़्यादा हो तो नॉर्मल होता है, कुछ लैब्स में 75 से ज़्यादा हो तो नॉर्मल होता है। तो वो अलग अलग लैब्स पे अलग अलग तरीकों से जिससे वो टेस्ट करते हैं उस पे निर्भर करता है। और दूसरा प्रश्न क्या था इनका?
0: दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे थे सर कि बोन डेंसिटी का पता कैसे लगाया जाए।
1: हाँ जी हाँ, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट होता है, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन। ये एक एक्सरे के प्रकार का टेस्ट होता है जिससे कि हड्डी कितनी मजबूत है उसका हमें अंदाजा हो जाता है। एक्सरे जितना रेडिएशन नहीं होता है, बहुत कम होता है, और ये बहुत जरूरी टेस्ट होता है, ना कि सिर्फ जानने के लिए कि हड्डियां नॉर्मल हैं या थोड़ी सी कमजोर हैं या बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बल्कि ऑल्सो जिन लोगों का हम हड्डियां कमजोर होने का इलाज कर रहे होते हैं उनका हर साल हम ये टेस्ट करा के देख सकते हैं कि हमारे इलाज से क्या हड्डियां उन जो बीएमडी डेक्सा स्कैन में का जो स्कोर है वो बेटर हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिससे कि बहुत आसानी से हो जाता है, 5 मिनट में हो जाता है और हड्डियों की मजबूती के बारे में पता चल जाता है।
0: डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
2: जी मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: अच्छा जी, अपना सवाल पूछें।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: सर मेरा पूछना ये है कि जैसे आपने विटामिन डी की अभी बात भी की है, तो सर्दी के मौसम में विटामिन डी कम हो जाता है, तो उसको लेने के लिए क्या करें, मेडिसिन लें या क्या करें?
1: जी आपने बिल्कुल सही बताया, बारिश के मौसम में और सर्दियों में जब धूप बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बादल रहते हैं या सर्दी रहती है, तो सनलाइट ही नहीं होगी तो हमारी स्किन कैसे बनाएगी विटामिन डी को? तो उसके लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विटामिन डी का टेस्ट करें। खून की जांच से पता चल जाता है कि विटामिन डी आपका कितना है, कम है या नॉर्मल है या ज़्यादा है। ज़्यादातर लोगों का अर्बन पॉपुलेशन में, शहरों में कम ही होता है, करीब 80-90% लोगों का कम पाया जाता है, क्योंकि हम लोग कभी धूप में जाते नहीं हैं, जाते भी हैं तो सिर्फ सर और चेहरा और गर्दन और हाथ एक्सपोज होते हैं, बाकी सब कपड़ों से ढके रहते हैं। रूरल पॉपुलेशन में लोग खेतों में काम करते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती रहती है तो विटामिन डी भी बनता रहता है। तो सर्दियों में अगर आपने टेस्ट करा लिया है और आपका विटामिन डी कम पाया गया है तो बहुत ही आसान है। आजकल बहुत सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो कि टैबलेट के फॉर्म में भी हैं, कैप्सूल के फॉर्म में भी हैं, सिरप्स भी आते हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं। तो वो आराम से अगर हम एक कैप्सूल भी विटामिन डी की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की हफ्ते में एक बार लेंगे 2 महीने के लिए, तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स पे विटामिन डी आ जाता है, और उसके बाद महीने में एक बार अगर हम लेते रहेंगे उसको तो वो मेंटेन रहता है।
0: सर एक श्रोता हमसे व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं जिनका नाम रविंदर पाठक और आशा पाठक है, ये नीदरलैंड से पूछ रहे हैं कि बोन में कट-कट की आवाज़ आती है, इसकी क्या वजह है? एज 65 है मेरे हस्बैंड की। ये अपने पति के लिए पूछ रही हैं क्योंकि उम्र 65
1: है। 65-65 साल की उम्र में अगर जोड़ों में से आवाज आ रही है, खासकर घुटनों में, तो वो आर्थराइटिस की तरफ ले जाता है हमें, कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही होगी, क्योंकि जब जोड़ का कार्टिलेज अंदर खराब हो जाता है, वो रफ हो जाता है, अनइवन सर्फेसेस हो जाते हैं, तो काफी फ्रिक्शन होता है और अंदर जो स्मूथनेस होती है वो चली जाती है, तो जो मूवमेंट होते हैं उससे आवाज़ आती है, जो कि सुनाई चाहे ना दे, लेकिन अगर जोड़ के ऊपर हाथ रख के हम मूवमेंट करें तो फील जरूर होती है, जिसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में क्रेपिटस बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि उनको उम्र की वजह से जो अर्थराइटिस हो रही है वही हो रही है।
0: सर एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
3: ओम शांति।
0: ओम शांति, अपना नाम बताएं।
3: बीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, अपना सवाल पूछें।
3: हाँ, मेरा पूछना है कि ऑस्टियोमायलाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कृपया विस्तार से बताएं। ओम शांति।
1: ओम शांति। आपने पूछा ऑस्टियोमायलाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में अंतर। दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। ऑस्टियोपोरोसिस पे तो हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे हैं, जो कि हड्डियों का कमजोर होना होता है, उसके कारण भी हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस भी अभी डिस्कस किया है। ऑस्टियोमायलाइटिस जो है, जो आपने पूछा है, वो बोन के इन्फेक्शन को बोलते हैं। अगर हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए किसी वजह से तो उसको हम लोग ऑस्टियोमायलाइटिस बोलते हैं। और हड्डियों का जो कमज़ोर होना होता है, चाहे मेनोपॉज के बाद हो महिलाओं में या ओल्ड एज में दोनों महिलाओं और पुरुषों में हो, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं।
0: सर जैसे कि अभी हम धूप की बात कर रहे थे, तो हम अक्सर सुनते हैं कि बिना विटामिन डी के शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित नहीं कर पाता। कहा जाता है कि धूप से विटामिन डी ले, तो इसका सही समय और तरीका क्या होता है?
1: आजकल इंडिया में अगर धूप आ रही है और तो सबसे जो सही समय है वो 11 बजे से 1 बजे या 11 बजे से 2 बजे का बीच का समय होता है, जिसमें कि अगर आधा घंटा भी इस ड्यूरेशन के बीच में आधा घंटा भी कोई अगर बाहर धूप मिल जाती है स्किन को, तो वो उस दिन के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बना लेता है। ये रोज करना पड़ेगा, रोज पर डे के हिसाब से ही बनती है। शरीर हमारा ज्यादा नहीं बना लेगा कि कल के लिए भी बना ले, परसों के लिए भी बना ले, ऐसा नहीं होता है। वो उस दिन के लिए जितनी जरूरत है उतनी बना लेगा स्किन। तो ऐसा फिर रोज किसी को करना पड़ेगा कि रोज आधे घंटे स्किन धूप का एक्सपोजर हो, तो ही आपकी रोज के रोज विटामिन डी बनता रहेगा।
0: जी, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
4: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
4: जी, मेरा नाम ओम कुमार है। मैम जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी कॉल स्वीकार करी है।
0: शुक्रिया आपका। अपना सवाल पूछें।
4: जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मैं कहना चाह रहा था कि जब मैं सुबह को उठता हूँ तो मेरे जो हाथों पैरों की हड्डी है इनमें दर्द रहता है जी। तो जैसे कि मतलब घूमने जाता हूँ तो पहले जो घुटने हैं उनमें दर्द हो जाता है थोड़ी दूर चलने में, तो इसका कोई उपाय बताइए जी।
1: आपकी उम्र कितनी है?
4: जी 14 है।
1: 14?
4: जी जी।
1: 14 साल के हैं आप?
4: जी जी।
1: 14 साल में आपको अगर सुबह उठकर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और आपके ये जोड़ का दर्द थोड़े समय के बाद ठीक हो जाता है क्या, कुछ घंटों के बाद?
4: मतलब हाँ, जैसे कुछ सिकाई-विकाई करते हैं या वैसे तेज़ खाते हैं।
1: तो आपके जो लक्षण हैं ये हम बिल्कुल टिप हाँ जी। तो देखिए, ये जो लक्षण आपके हैं इतनी कम उम्र में ना, ये एक बीमारी होती है जिसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। आपको ये हो सकती है, आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले और वो आपके कुछ टेस्ट्स होंगे, खून की जांचें होंगी, और उससे फिर वो कंफर्म होगा कि आपको वो बीमारी है कि नहीं है।
0: सर जैसे कि इनकी उम्र 14 साल बता रहे हैं और इन्हें दिक्कत है, तो हड्डियों के लिए बचपन से ही किस तरह के खान पान पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि ये हमेशा मजबूत रहें, इन्हें बेहतर पोषण मिले?
1: हम लोग के ह्यूमन बीइंग्स में जो हड्डियां होती हैं ये बचपन से लेकर करीब 22-25 साल तक की उम्र तक एक पीक बोन मास तक पहुंचती हैं। जो हड्डियां धीरे धीरे लंबे होते हैं, लड़के जो होते हैं 18 साल की उम्र तक ग्रोथ होती है, लड़कियों की 16 साल की उम्र तक होती है। तो हड्डियां लंबी भी होती हैं, मोटी भी होती हैं और मजबूत भी होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो पीक बोन मास पहुंचता है किसी का, वो करीब करीब 22-25 साल की उम्र तक का पहुंचता है। तो ये शुरू का जो पीरियड है बचपन का और यंग एज का, 25 साल से पहले का, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें हम अपनी बोन्स को मजबूत कर रहे हैं। जितनी हम एक तरीके से हम अपनी तिजोरी में पैसा जमा कर रहे हैं, जो कि आगे की उम्र में वही खर्च होता रहेगा धीरे धीरे। तो इसलिए जितना ज्यादा आप इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा आपकी हड्डियां देर से जाके कमज़ोर होंगी, उतना ज़्यादा वो चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचपन में, खासकर आजकल, क्योंकि बच्चे आजकल के सब फ़ोन पे खेलते रहते हैं या टीवी में गेम्स खेलते रहते हैं या कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। जो हम लोग के बचपन में, जैसे हम लोग बाहर जाके खेलते थे, धूप में खेलते थे, आउटडोर स्पोर्ट्स आजकल बहुत कम हो गए हैं, बच्चे खेलते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका खेलना, उनको पेरेंट्स को उनको घर में नहीं बिठाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई बाहर जाके खेलो, धूप में खेलो, कोई बात नहीं, धूप में खेलेंगे, जितना दौड़ेंगे कूदेंगे उतनी उनकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, बोन्स मसल स्टिमुलेट होंगी, बोन स्टिमुलेट होंगे ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जितना ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन पहुँचेगा डाइट में, दूध दही पनीर, नॉन वेजिटेरियन फूड, अंडे, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन्स देना, कैल्शियम देना, और ऑल्सो टू मॉनिटर कि उनका विटामिन डी तो नहीं कम है। अगर धूप में खेलेंगे तो वैसे ही कम नहीं होगा, धूप में बनता ही रहेगा उनका विटामिन डी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग खूब खेलें, खूब अच्छा खाए पिएं, कैल्शियम और प्रोटीन से रिच खाना पीना खाएं। इससे क्या होगा कि उनकी पीक बोन मास बहुत अच्छी रहेगी, और आगे की उम्र में जब उनका मिडिल एज होगा या ओल्ड एज होगा तो उनको ये हड्डियां कमजोर होने की समस्या नहीं होगी।
0: जी, तो बचपन में बहुत ज्यादा ध्यान
1: देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
0: सर, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम कहते हैं सबसे जरूरी है, तो एक सामान्य वयस्क को, एडल्ट को, रोजाना कितने कैल्शियम की जरूरत होती है और इसके बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत क्या है?
1: तो प्राकृतिक स्रोत तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिए कि मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, मिलेट्स जैसे रागी है इसमें बहुत होता है, मखाने हैं इनमें बहुत होता है, फ्रूट्स में होता है जैसे

0: केला है इसमें, और नॉन वेजिटेरियन फूड में भी होता है कैल्शियम, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अब सब निर्भर करता है कि वो अगर ग्रोइंग एज है तो थोड़ा ज़्यादा बच्चों को दूध ज़्यादा देना चाहिए, 2-3 ग्लास तो कम से कम रोज के दिन पीना ही चाहिए। 500 मिलीग्राम ऑन एन एवरेज है जो कि रोज हम लोग को लेना ही चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या डिलीवरी के बाद लैक्टेटिंग मदर हैं तो उनको 1000-1500 मिलीग्राम तक भी रोज हम कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं।
1: जी, एक सवाल पूछ रहे केडी त्रिपाठी हैं ये, इनकी उम्र 76 इयर्स है, ये रांची से पूछ रहे हैं कि व्हाट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम इज बेटर फॉर मी, सम डॉक्टर से कैल्शियम कार्बोनेट, सम से कैल्शियम सल्फेट।
0: कैल्शियम एक्चुअली कई आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी आता है, कैल्शियम साइट्रेट भी आता है, कुछ लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट सूट करता है, कुछ लोगों को साइट्रेट सूट करता है, बट कैल्शियम साइट्रेट जो है वो बेहतर माना जाता है क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बेटर है।
1: जी, और ये एक और सवाल है, ये पूछ रही हैं 6 महीने ये इन्होंने अभी लैक्टेटिंग मदर है, ये बच्चे को दूध पिला रही हैं, 6 महीने का इनका बच्चा है, तो ये इनका पूछना है कि मैं अपना दूध पिलाती हूँ तो क्या उन बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और नौकरी पेशा महिलाओं को डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे। ये नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार से पूछ रहे हैं कि अगर कोई प्रसूता अगर 6 महीने अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और नौकरी पेशा महिलाओं को क्या सलाह आप देंगे।
0: तो अगर ये महिला अपना दूध पिला रही है, जो कि हर महिला पिलाती ही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल एंटीनेटल क्लिनिक्स में भी जब महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको विटामिन डी तब से शुरू कर दिया जाता है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी शुरू कर दिए जाते हैं, और ये सिर्फ तभी के लिए नहीं है कि जब तक बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए, डिलीवरी के बाद भी ये बहुत ज़रूरी है कि मदर को भी और चाइल्ड को भी दोनों को ही विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद भी विटामिन डी के ड्रॉप्स लेने चाहिए, और महिला को भी अपना कैल्शियम का बढ़ाना पड़ेगा सप्लीमेंट, क्योंकि उनके शरीर को शुरू में तो बच्चे को बनाना था तो ज़्यादा चाहिए था, और अब क्योंकि वो लैक्टेशन है, वो दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो उस वजह से भी उनको कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा है।
1: डॉक्टर साहब एक गाना सुन ले।
0: हाँ जी, हाँ बिल्कुल।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशंस। और इस विषय पर आज आप सबके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। अगर आपके मन में भी इस विषय को लेकर कोई सवाल है और आप चाहते हैं सही सलाह, तो बस फोन उठाइए और हमसे सीधे बात कीजिए। हमारा फोन नंबर है 0112342 1080, दूसरा नंबर है 0112342 1082, और हाँ, आप व्हाट्सएप के जरिए भी रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं इस नंबर पर, जो है 9868107070। डॉक्टर साहब, भारत में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित आहार और सही पोषण के प्रति जागरूक करना है। और आज हमारा खास विषय भी है हड्डियों के पोषण के बारे में। तो डॉक्टर राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि बढ़ती उम्र में घुटनों के दर्द या जोड़ों के दर्द की शिकायत आम है, तो आहार में ऐसा क्या शामिल करें जो जोड़ों के कार्टिलेज को बनाए रखने में हमारी मदद करे?
2: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे ही हमारा जो हड्डियों के आखिर में, जो एंड में जो चीज़ होती है, वो कार्टिलेज होती है। तो दो हड्डियाँ कार्टिलेज के साथ ही एक जोड़ बनाती हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कार्टिलेज में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हम जिंदगी भर उस पर चलते हैं घुटनों पे, तो कार्टिलेज धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। अगर किसी को बचपन में कोई या यंग एज टाइम पे घुटने की कोई चोट लग गई हो या इन्फेक्शन हो गया हो, तो जोड़ और जल्दी ख़राब हो जाता है उनका कार्टिलेज। तो अपार्ट फ्रॉम जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि खान पान कैसे रहना चाहिए और एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इसके अलावा अगर खासकर कार्टिलेज की बात करें, तो इसके लिए हम लोग को जो चाहिए होता है वो होता है कोलेजन। कोलेजन से ही कार्टिलेज बनता है। तो अगर कोलेजन का ही अगर आपको खान पान ज़्यादा चाहिए, तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड में, फिशेज में बहुत कोलेजन पाया जाता है, खासकर सी फूड में, सी फिशेज में, और सी के जो अंदर के प्लांट्स होते हैं उनमें भी बहुत कोलेजन होता है। वेजिटेरियंस के लिए कोलेजन, जो वेजिटेरियन टाइप का कोलेजन होता है, वो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। तो उसके लिए वो लोग आजकल कोलेजन सप्लीमेंट्स आ गए हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। इस सिर्फ कोलेजन ही लेने से कार्टिलेज आपका ठीक नहीं रहता। मैं तो अभी भी कहूँगा कि जो एक्सरसाइजेज हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत ज़्यादा कामयाब होती हैं। उससे काफ़ी हद तक आपके जो बदलाव आ रहे हैं घुटनों में, कार्टिलेज ख़राब हो रहा है, वो थोड़ा टल सकता है।
1: जी, एक सवाल व्हाट्सएप पर अनूप कुमार पूछ रहे हैं रांची से। इनकी उम्र 54 साल है और ये 37 साल से बीपी शुगर के पेशेंट हैं, और ये पूछ रहे हैं कि स्टिफनेस इन बोन्स, फाइंड डिफिकल्टीज वॉकिंग। तो ये पूछ रहे हैं, प्लीज टेल रिलीफ प्रिवेंशंस, प्रिकॉशंस और इवन क्योर।
2: 54 साल की उम्र है और अगर इतने सालों से इनको ये बीमारियां हैं, और अभी बता रहे हैं कि उनको स्टिफनेस आ रही है जोड़ों में और उनको दर्द भी रहता है, तो इसका मतलब कि इनको आर्थराइटिस जो है थोड़ी सी जल्दी आ रही है। इतनी कम उम्र में तो नहीं आनी चाहिए, बट अगर आ रही है तो वो आर्थराइटिस ज़रूर हो सकती है। ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलें, वो देखेंगे कि कहाँ पे दर्द है, कैसा दर्द है, किस वजह से दर्द है, कुछ एक्सरे उनके कराने पड़ सकते हैं जिससे कि पता चल जाएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज की है। उसका इलाज शुरुआत में, ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज में एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जो देते हैं जो कार्टिलेज को ख़राब होने से रोकती हैं, जैसे कि हमने भी बात करी कोलेजन वगैरह की, और कुछ कुछ चीज़ें उनको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी कि सीढ़ियाँ अवॉइड करें, ज़मीन पे बैठना अवॉइड करें, इंडियन टाइप बाथरूम यूज़ करना बंद कर दें या कम कर दें। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कुछ घुटनों में, अंदर जोड़ों में इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं, चाहे स्टेरॉयड का हो, चाहे विस्को सप्लीमेंट्स हो, उससे भी पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर थोड़ा सा पार्ट कोई घुटने का ख़राब है, तो कुछ ऑस्टियोटमीज होती हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिससे कि घुटने का जो टेढ़ापन है उसको सीधा किया जा सकता है, अलाइनमेंट सही किया जा सकता है, तो घुटना और देर तक चल सकता है। और जब लास्ट में बहुत ही ज़्यादा घुटना ख़राब हो जाता है और किसी चीज़ से कोई आराम नहीं मिल रहा होता है, तो फिर जोड़ बदलने का ऑपरेशन टोटली रिप्लेसमेंट करने से आराम मिल जाता है।
1: सर, जैसे हमने अभी बात की ऑस्टियोपोरोसिस की, तो ये होता क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, जैसे हम समझ पाएं कि अब ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो चुकी है और लोग समय रहते इसकी जांच कैसे करा सकते हैं।
2: ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ महिलाओं की मेनोपॉज की बात करी और ओल्ड एज की बात करी, बट ऑस्टियोपोरोसिस पहले भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है। कई बीमारियां हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कुछ लोग हैं जिनको दौरों की बीमारी है, तो उसकी जो दवा चलती है दौरे रोकने के लिए, उससे भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है हड्डियों को कमज़ोर करना। कई लोग हैं जिनको अस्थमा है या और कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जिसके लिए उनको स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स की वजह से भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ मेनोपॉज़ल लेडीज़ में या ओल्ड एज में हो, वो यंग एज में भी, यंग लोगों में भी हो सकती है अगर उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हों। तो इसलिए और सबसे कॉमन लेकिन जो है वो यही है, पोस्ट मेनोपॉज़ल ऑस्टियोपोरोसिस और सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो, जैसे पहले भी बताया, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन, इससे बिल्कुल श्योर शॉट पता चल जाता है कि हड्डियाँ कितनी नॉर्मल हैं या थोड़ी सी कमज़ोर हैं, जैसे कि ऑस्टियोपेनिया, या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस।

0: प्रोसेस जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो बहुत छोटी सी ही चोट से हड्डी टूट सकती है, तो इसलिए हमें वो चीज़ प्रिवेंट करनी है। और ये प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है और ये बहुत ही साइलेंट डिज़ीज़ है, पता भी नहीं चलता है कि आपकी धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो शुरुआत होती है किसी को कमर का दर्द, किसी महिला अगर वो 50+ लेडी हैं उनको कमर का दर्द होना शुरू हो जाएगा, कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं, झुक कर काम नहीं किया, कोई वजन नहीं उठाया, लेकिन धीरे धीरे दर्द आना शुरू हो गया है कमर में। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हमें हिंट देता है कि इस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो रही होगी। और अगर वो नेग्लेक्ट की जाए उस समय, उनका टेस्ट ना करें, उनका ट्रीटमेंट ना करें, प्रिवेंट ना करें ऑस्टियोपोरोसिस का होना, तो आगे जाके सारी ही हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आम तौर से सबसे कॉमन हड्डियां जिसका हम टेस्ट करते हैं वो है रीढ़ की हड्डी, हिप की बोन, कूल्हे की हड्डी और कलाई की हड्डी। यही तीन हड्डियां हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन भी हैं फ्रैक्चर्स के लिए। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स जो होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने के जो फ्रैक्चर होते हैं, वो यही तीन हड्डियों के होते हैं गिरने से। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें यंग पॉपुलेशन को भी उनका भी टेक केयर करना है कि उनको भी कहीं ये सारी बीमारियां ना हो जिनकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं।
1: जी, और सर कि ज़्यादा चाय पीना, कॉफ़ी पीना या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, क्या हड्डियों की सेहत पर इसका भी प्रभाव पड़ता है? और ये सर, कहते हैं कि शरीर से कैल्शियम को कम कर सकती हैं, क्या ऐसा होता है?
0: अगर बहुत मात्रा में, देखिए एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड फॉर हेल्थ, तो बहुत ज़्यादा कोई चाय पियेंगे, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे और बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी डाइट कम हो जाएगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली डेफिनेटली बोन हेल्थ को भी फ़र्क पड़ेगा उसमें। लेकिन हाँ, कभी एक दो कप दिन में पीने से कोई नुकसान नहीं है।
1: जी जी। सर ये भी है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर गए और कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। ओवरडोज या गलत तरीके से सप्लीमेंट लेने की क्या नुकसान भी हो सकते हैं?
0: बिल्कुल होते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि विटामिन डी जो है, हमारे शरीर में ना दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे शरीर के अंदर जो फैट है उसमें जम जाता है जाके, उसमें जमा हो जाता है जाके। तो विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो विटामिन डी भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, शरीर को ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वो फैट में जमा हो जाएगा। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे विटामिन बी और सी, अगर ये कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं तो, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल हैं, वो यूरिन से निकल जाते हैं बाहर हमारे शरीर से, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारा ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ सकता है, हमारे आई बॉल्स बाहर निकलने जैसी लग जानी शुरू हो जाती हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए कभी भी अपने आप ये सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए केमिस्ट के पास जाकर, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हो गए आपको तो उसको फिर शरीर से निकालना भी मुश्किल काम होता है। तो इसलिए अगर किसी को लेना भी है तो पहले टेस्ट ज़रूर करा लें कि उनका विटामिन डी कम है या नॉर्मल है, और उसके बाद ही डॉक्टर के सलाह से ही ये सप्लीमेंट्स भी लें।
1: जी, और एक गाना सुन लें क्या?
0: जी हाँ।

0: आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। डॉक्टर साहब, सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को जोड़ों और हड्डियों में ज्यादा दर्द क्यों महसूस होता है, और इससे बचने के लिए डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए?
1: ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ होती है उनके दर्द आमतौर से सर्दियों में बढ़ जाते हैं, और उसका मुख्य कारण ये है कि सर्दियों में क्या होता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हमारी जो खून की नलियां हैं शरीर में, जो खून ले जाती हैं शरीर के वेरियस पार्ट्स में, तो वो सिकुड़ जाती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। अब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो जितने भी हमारे केमिकल्स जो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, जो जोड़ों पे दर्द का एहसास दिला रहे हैं, दर्द हो रहा है जिनकी वजह से, वो उतने धुल के निकल नहीं पाते हैं और दर्द ज़्यादा होता है। और भी इसमें और भी कारण हैं कि लोगों को सनलाइट नहीं मिलती है, और विटामिन डी की कमी से भी दर्द होता है लोगों को मांसपेशियों में, जोड़ों में। तो इसका खान पान में तो यह है कि आप गर्म खाना खाएं, सेहतमंद खाना खाएं, बैलेंस्ड डाइट लें, कैल्शियम रिच डाइट लें, जितना हो सके उतना धूप में रहें, और विटामिन डी के नहीं तो सप्लीमेंट्स ले लें अगर कमी है, और सिकाई और एक्सरसाइज। सिकाई करना, जोड़ों पे सिकाई करेंगे, गर्माहट पहुंचेगी तो अपने आप खून का प्रवाह बढ़ेगा, ब्लड फ्लो वहां पे उस जगह बढ़ेगा। मालिश करें, उससे मसल्स में भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर ठंड में नहीं जाना है, पोल्यूशन भी हो जाता है शहरों में, तो घर के अंदर ही एक्सरसाइजेस करें, लेकिन करें ज़रूर। तो इन सब चीज़ों से उनको सर्दियों में जो दर्द बढ़ जाता है उसमें राहत मिलेगी।
0: सर, एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
2: एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून
2: जी। राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा दिल्ली से ही, 48 वर्ष मेरी उम्र है। मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा कि किसी पेशेंट को हड्डियों की बीमारी है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर जो है ग्लूटियस एमिशिया है, कैसे पता चले? दूसरा सवाल मेरा कि जो आपने कहा कि विटामिन डी धूप से मिलता है और इसकी सप्लीमेंट टैबलेट या मेडिसिन भी आती है, तो अब मेरा जमाना पूछता रह ये रहेगा कि अगर विटामिन डी के लिए धूप में बैठे या इसकी सप्लीमेंट ले, या दोनों ही आप एडवाइस करेंगे? और कैल्शियम के लिए जो आपने कहा कि केला दूध बेहतर रहेगा, तो केला

0: अंडों में से आप किसे तवज्जो देंगे अहमियत, ये बताएं और बड़ी मेहरबानी होगी।
1: आपका जो पहला प्रश्न था वो क्लियर नहीं था, आप वो प्लीज रिपीट कर सकते हैं, शायद फोन कट गया।
2: जी जी जी।
1: तो इन्होंने पहला तो मैं नहीं सुन पाया, इनका क्लियर नहीं था प्रश्न। दूसरा इन्होंने पूछा था कि विटामिन डी में धूप में बैठें या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें या धूप में बैठें, ये सब कुछ निर्भर करेगा उनके विटामिन डी टेस्ट के रिपोर्ट पर। अगर उनका विटामिन डी बहुत कम है तो हम उन्हें इंजेक्शन लगा सकते हैं, अगर कम है, बहुत कम नहीं लेकिन कम है, तो हम उनको ओरल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। और अगर उनका नॉर्मल है विटामिन डी तो फिर तो उनको कोई भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। धूप में जहां तक हो सके लोगों को बैठना चाहिए, खेलना चाहिए, धूप का एक्सपोजर बहुत जरूरी भी होता है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं पॉसिबल है, बारिश का मौसम है, सर्दियां हैं, धूप ही नहीं निकल रही, या आपका काम ऐसा है कि आपको घर के अंदर ऑफिस के अंदर ही बैठ के करना पड़ता है, तो अलग से समय निकाल के धूप में बैठने की जरूरत नहीं है, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर विटामिन डी की कमी हो।
2: सर ये दूसरा सवाल पूछ रहे थे कि अंडा या केला दोनों में से क्या बेहतर है।
1: दोनों में ही अच्छा मात्रा है कैल्शियम का, और अंडा लेंगे तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा साथ में, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है।
2: जी जी। सर क्रैश डाइटिंग का आजकल तेजी से वजन घटाने की कोशिश का हड्डियों की मजबूती पर क्या विपरीत असर पड़ता है?
1: ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि बहुत ही एकदम खाना कम कर देते हैं वजन घटाने के लिए।
2: जी जी।
1: तो इससे तो काफ़ी मुझे लगता है कि नुकसान ही होता है, क्योंकि आप एकदम से खाना पीना बंद कर देते हैं, फास्टिंग होती है या बहुत ही सिलेक्टिव खाना खाते हैं, तो इसका मतलब कि प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट तो पहुँच नहीं रही। हर प्रकार का जो न्यूट्रिशन होना चाहिए शरीर को चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, फैट्स हों, मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, ये सब तो नहीं पहुँच रहे हैं, तो इससे जरूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई एक प्रकार का ही खाना खा रहे हैं या आप बिल्कुल खाना कम कर दिया है, तो आपके अंदर सारी चीजें कम पहुंच रही हैं, इंक्लूडिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी, ये कहीं ना कहीं जरूर ही हड्डियों पे और जोड़ों पे भी प्रभाव डालता है, और इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। खाना पीना कम करेंगे, वजन कम हो जाएगा तो मसल मास भी कम हो जाएगा, और मसल मास कम होएगा तो मसल्स ही अगर स्ट्रांग होती हैं तो स्टिमुलेट करती हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो अगर मसल मास भी कम होगा तो भी वो इनडायरेक्टली हड्डियों को कमजोर करेगा।
2: जी सर, एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
3: हेलो
2: जी, अपना नाम बताएं।
3: जी मेरा नाम कुशागर कंठ है।
2: जी अपना सवाल पूछें।
3: जी मेरा ये सवाल है कि विटामिन डी के साथ विटामिन के टू अपने शरीर के लिए लेना जरूरी है एक बार में, कि अलग अलग भी उसके लिए यूज कर सकते हैं?
1: देखिए विटामिन डी आप किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, विटामिन के, के टू, ये सब कुछ हो ना हो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और सिंपल विटामिन डी अगर सनलाइट एक्सपोजर से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डाइट्री, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, सी फूड खा रहे हैं, फिश वगैरह ले रहे हैं, तो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सिंपल विटामिन डी सप्लीमेंट जो होता है वो आपको उतना भी काफ़ी है। आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज सब कंपनीज को अपना अपना सामान बेचना है, तो वो कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर देते हैं, घटा देते हैं, जस्ट टू बी डिफरेंट, अपने आप को डिफरेंट प्रोडक्ट बना के, वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा है। और आप चाहे के टू के साथ लें या ना लें, उससे खास फर्क नहीं पड़ता।
2: सर एक मैसेज आ रहा है, इफ यू कुड गिव द पब्लिक जस्ट 3 प्रैक्टिकल पीसेज ऑफ एडवाइस फॉर कीपिंग देयर बोन्स हेल्दी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, व्हाट वुड दे बी?
1: अच्छा, तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने ज्यादातर इन सब चीजों का डिस्कशन कर ही लिया है कि आपको डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, चाहे डाइट से हो, चाहे सनलाइट से हो, चाहे सप्लीमेंट से हो, और प्रोटीन्स, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका शरीर का वज़न होगा उतना ही आपकी हड्डियों पे और जोड़ों पे लोडिंग होएगी, और वो कहीं ना कहीं आपको आगे तकलीफ देंगे। और तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके मसल्स को स्ट्रांग करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्थोपेडिक्स में, बोन्स जॉइंट्स की प्रॉब्लम में, अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक आधे से ज्यादा तकलीफ तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही ठीक हो जाती हैं। काफी बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए डॉक्टर्स आपको एक्सरसाइज बताते हैं। पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं मेडिसिन खाने के पार्ट में, लेकिन अगर वो एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो वो देखेंगे कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए उनको एक्सरसाइजेस ज्यादा हेल्प करेंगी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, ना कि मेडिसिन।
2: और सर अब आखिरी सवाल ये है कि थायराइड और डायबिटीज या पेट संबंधी समस्याओं के मरीजों में हड्डियों की कमजोरी का खतरा ज्यादा क्यों होता है?
1: थायराइड प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, चाहे थायराइड कम हो, ग्लैंड कम थायराइड स्किन हार्मोन बना रही है या ज़्यादा बना रही है, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में ही बोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में वजन भी बढ़ता है, वाटर रिटेंशन भी ज़्यादा होती है, मोटापा आ जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो हड्डियों पे और जोड़ों पे भी फर्क पड़ता है। लोडिंग ज़्यादा होती है तो जोड़ जल्दी ख़राब होते हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाए, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होगा तो बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। और डायबिटीज़ में तो ये फ़र्क पड़ता है कि अगर किसी को कोई भी थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो जाए हड्डी के आसपास, और अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो हड्डी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। जिन लोगों के हड्डियां टूट जाती हैं उनमें भी अगर उस आदमी को डायबिटीज़ है तो वो जुड़ने में भी ज़्यादा समय ले लेती हैं। उनको नॉर्मल टाइम जो उस हड्डी को जुड़ने में लगता है उससे ज़्यादा समय लग जाता है अगर किसी को डायबिटीज़ है तो।
2: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने डॉक्टर राहुल खरे से जाना कि हमें अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रखना है, यानी हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर राहुल खरे, आपका इस कार्यक्रम में आने और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम से संबंधित किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा मेल एड्रेस है healthairdelhi@gmail.com। आज बस इतना ही। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति। अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हर दिन दोपहर 3 बजे से जरूर सुनिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार।
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, चार बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और व्यापार मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत के मामले में दिल्ली नगर निगम के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने इमारत के मालिक को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के साथ सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मलबे से 12 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोगों की हालत स्थिर है। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार ए मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची की 7 इमारतों में छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी ने नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए 14 नक्सली डंप बरामद किए गए। नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। इसरो ने उन खबरों और अटकलों का खंडन किया है जिनमें इसके निजीकरण या भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही थी। इसरो ने स्पष्ट किया कि न तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। दिग्गज सिनेमेटोग्राफर टी एन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय, अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। उधर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये थी अब तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर। और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम अल्फा जैन। और आज यानी सोमवार के दिन अल्फा जैन में हम लेकर आते हैं यूथ स्पीक्स, यानी कि आप युवाओं में से मिलता है किसी एक को मौका यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने का और अपने अनुभवों के जरिए आपके साथ अपनी जिंदगी की दास्तां को शेयर करने का। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे युवा जिनकी पहचान सिर्फ एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। महज 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने कानून, सामाजिक सरोकार, खेल और रंगमंच, इन चारों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। हमारे साथ हैं तुषार पाठक, जो दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। तुषार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कानून की राह चुनी और इसी के साथ वो सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। तुषार की बात करें तो वो एक बेहतरीन रनर भी रहे हैं और रनिंग में गोल्ड मेडल्स भी जीत चुके हैं। उन्हें थिएटर का भी शौक है और रंगमंच पर भी वो अपनी प्रतिभा बिखेर चुके हैं। तो कानून की समझ, समाज के प्रति जिम्मेदारी, खेल का जुनून और कला से जुड़ाव, इन सब का शानदार संगम है हमारे

0: आज के अल्फा जेन गेस्ट तुषार पाठक। तुषार बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। तो तुषार, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, और आप किस टॉपिक पर युवाओं से बात करने वाले हैं?
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार पाठक है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिला है कि आज मैं आकाशवाणी के साथ जुड़ के अपने युवाओं से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कुछ बातें कर सकता हूँ। तो जो मैं हूँ, जो आप सब हैं, युवा, देश का युवा, आज हम अपने युवाओं के बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़ी हर समस्या, हर खुशी, उसके बारे में बात करेंगे।
0: बिल्कुल तुषार, तो कहीं ना कहीं आप युवा होने के नाते जो हमारे युवा साथी हमें सुन रहे हैं उनके हर इमोशन से रूबरू होंगे। आप जानते होंगे कि किस तरीके से युवाओं में जुनून है, पैशन है, और कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर वो घिर भी जाते हैं, चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो उनकी जो चुनौतियाँ हैं उन पर भी हम बात करेंगे और तुषार रहेंगे आपके साथ, और कहीं ना कहीं आप उनके साथ एक स्पेशल कनेक्ट महसूस करने वाले हैं।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तुषार और आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत के बारे में जो अगर सही दिशा में मुड़ जाए तो इतिहास रच देती है। जी हां, हमारी युवा शक्ति। हम अक्सर सुनते हैं कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन सच तो ये है कि युवा सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि हमारा वर्तमान भी है। इस दौर में आपके पास असीमित ऊर्जा, नई सोच, जोखिम उठाने का गजब साहस होता है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा तकनीकी या सामाजिक बदलाव आया है उसके केंद्र में युवाओं की यही ऊर्जा रही है। तो चलिए आज इस सफर की शुरुआत करते हैं।

तो दोस्तों, जैसा कि हम सब ने सुना है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जीवन में बड़े सपने देखना सबसे पहला कदम है। जो सपने देखने की हिम्मत ही नहीं करता, वो इतिहास क्या बनाएगा। लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और अनुशासन चाहिए। और अगर इस रास्ते में हार मिले तो हमें डरना नहीं है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों प्रयोग किए थे। गिरकर उठना और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली युवा की पहचान है।

0: बिल्कुल दोस्तों, छोटी सी आशा ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हम अपनी जान लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्यों तुषार? बिल्कुल तुषार, और ये भी है कि कहीं ना कहीं जब हम अपनी राह पर आगे बढ़ते हैं तो साथ ही साथ कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर बात करूँ युवाओं की, तो युवाओं के सामने आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
1: सबसे बड़ी चुनौती जो आज हम युवाओं के सामने है वो है कंपैरिजन, यानी तुलना करना। हम सोशल मीडिया खोलते हैं, दूसरों की स्टोरीज देखते हैं और खुद निराश होने लग जाते हैं कि कोई कितना खुश है, कोई कहाँ घूम रहा है। लेकिन हम सबकी एक अपनी क्षमता है, सबकी सोचने की एक ताकत है और हमारी राह हमारी क्षमता और ताकत के अनुसार ही होनी चाहिए।
0: बिल्कुल तुषार, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दौर में जब सब चीज़ें हमें ऑनलाइन दिखने लगती हैं तो दूसरों की ज़िंदगी को देखकर कुछ लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, लेकिन मुझे लगता है ना, वी शुड बी आर सेल्फ। हमें अपने आप से प्यार करना सबसे पहले सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं ना तो अपनी खूबियों को, अपनी कमियों को पहचानते हैं, अपनी खूबियों से प्यार करते हैं और उनको अपनी दुनिया के सामने रखते हैं और अपनी कमियों से जूझते हुए उनसे बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं।
1: दूसरों की देखा देखी तो हमें कभी करनी ही नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: दूसरों की देखा देखी या समाज के दबाव में आकर अपने करियर का, अपनी खुशियों का हमें फैसला नहीं लेना चाहिए। हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए जो हमारे दिल को भाए और जिसमें हमारा जुनून हो, क्योंकि जब आप जुनून का पीछा करेंगे तो सफलता का कुछ स्वाद ही अलग होगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार, जुनून के साथ, पैशन के साथ अपने लक्ष्य को पाने

0: के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसका मजा बहुत ही बढ़िया होगा। और इसी के साथ हमारी इन बातों का सिलसिला चलता रहेगा आपके अपने शो अल्फा जेन में, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
4: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
3: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
4: हैं इतनी जल्दी?
3: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
7: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन,
7: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो अल्फा जेन, और अल्फा जेन में बात हो रही है युवाओं की, उन युवाओं की जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कई चुनौतियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तुषार पाठक। तुषार, हम बात कर रहे थे युवाओं की, तो युवाओं की कुछ चुनौतियों की तो हमने बात की, लेकिन अगर बात करें युवाओं के जीवन की सबसे अमूल्य चीज की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उनके जीवन में होती है, तो आपको क्या लगता है वो क्या है?
1: तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो धन है, सबसे अमूल्य चीज़ है, वो है उनका समय। एक युवा अपने समय को किस तरह प्रयोग करता है, किस तरह समय के साथ आगे चलता है, नई नई स्किल्स अपग्रेड करता है, उस पर कैसे ध्यान देता है
0: जी।
1: क्योंकि आजकल के बदलते ज़माने में सिर्फ कॉलेज की डिग्रियां, डिप्लोमा ही काफ़ी नहीं है।
0: बिल्कुल सही।
1: अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो समय के साथ चलते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, ताकि कोई रुकावट आए तो भी आप उसको पार कर लें। समय आपका साथी बने, आप समय के साथी बने और आगे बढ़ते रहें।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार, क्योंकि कभी ना कभी अगर आपको किसी चुनौती का सामना करना भी पड़ता है और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हो रही है, ये आपदा मेरे जीवन में ही क्यों आई है, लेकिन आपको सोचना है कि क्या पता वो आपदा आपके जीवन में कोई अवसर लेकर आई हो, कि कहीं ना कहीं आपके लिए उस आपदा के बाद भी कुछ ऐसे रास्ते खुल रहे हों जिनसे आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। क्यों, सही कह रही हूं ना तुषार?
1: बिल्कुल, जैसे कि कोविड आया
0: जी,
1: हम सब परेशान हो गए, सबके परिवार परेशान हो गए, लेकिन उसी आपदा में एक अवसर निकल के आया, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग।
0: बिल्कुल।
1: और अगर मैं अपने प्रोफेशन की भी बात करूं तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमने कितने मैटर्स करे,

0: ऑनलाइन हो जाने से हमारे जीवन में इतनी सरलताएं आ गई। वही बात है कि समय के साथ, अगर हम समय के साथ ऑनलाइन नहीं सीखते तो हम पीछे रह जाते।
1: बिल्कुल, बहुत सारे काम रुक जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उस आपदा में भी एक रास्ता निकाला, उस चुनौती का भी हमने समाधान निकाला और कई चीजें ऑनलाइन होने लगी और उससे कहीं ना कहीं तुषार आने जाने का समय भी बचा ही है।
0: जी जी,
1: तो चलिए हमारी इन बातों का सिलसिला चलता रहेगा और आप इंजॉय कीजिए ये गाना, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।
2: फिर है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती।

0: तुषार, सूरमा बनने की कोशिश तो हम में से बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर जीवन में सूरमा बनना है तो क्या कुछ इम्पोर्टेंट है युवाओं के लिए, बल्कि हम सभी के लिए?
1: जैसा कि आज का दौर चल रहा है डिजिटल एज, आज के युग में इंटरनेट एक ऐसा खजाना है जो पहले कभी नहीं था। अब आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी सीख सकते हैं, अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि हमने कोविड में देखा कितने युवा इन्फ्लुएंसर्स निखर के बाहर आए, आज आप अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ध्यान ये भी रखना है कि इस पावर के साथ आती है जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार।
1: इंटरनेट का सही इस्तेमाल हमेशा खुद को मजबूत बनाने और ज्ञान बढ़ाने के लिए करें, ना कि सिर्फ रील्स पे टाइम पास करके अपना स्क्रॉलिंग में टाइम खराब करें।
0: बिल्कुल सही, क्योंकि हम में से कई लोग यही कर रहे हैं, बस स्क्रॉल कर रहे हैं और बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जो इन द एंड ऑफ द डे आपको समझ में आता है कि वेस्ट हो गया। जब आप अपना स्क्रीन टाइम अगर आप अपना देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि अगर आपने एक दो घंटे सिर्फ एक ऐप पर स्क्रॉल करते हुए वेस्ट कर दिए, तो वाकई में आपको दुख होता है कि यार इतना सारा टाइम तो वेस्ट ही हो गया। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट करते रहने की जरूरत है कि आप कुछ इंटरनेट से अच्छा सीखें, अच्छा करें और उसका इस्तेमाल किया जाए किसी पॉजिटिव चीज के लिए।
1: तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी होता है, साथ ही साथ जरूरी होती है कड़ी मेहनत, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ सफलता के लिए बेहद ही जरूरी है। तुषार, आपको क्या लगता है कि आजकल के युवाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां तो हैं, लेकिन अगर वो सफलता पाना चाहते हैं तो उनको किन चीजों को अपनाना होगा? क्या है आपके लिए सफलता का मूल मंत्र?
1: अगर आप मुझसे पूछे कि सफलता के मूल मंत्र क्या हैं, तो मैं कहूंगा सफलता के तीन बड़े मूल मंत्र हैं, अनुशासन, निरंतरता और धैर्य। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। डिसिप्लिन आपको तब भी मदद करता है, वो आपको तब भी प्रोत्साहन देता है कि आपको काम करना है जब आपका मन नहीं होता। कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे किए गए छोटे छोटे प्रयास जो हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, पेशेंस।
0: बिल्कुल,
1: पेशेंस, समय और संयम बड़े प्रयासों के सफल रिजल्ट के लिए सबसे जरूरी है, समय और संयम। तो संयम बनाए रखें, अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलते रहें और कंसिस्टेंट रहें अपने पड़ाव में।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार, बहुत जरूरी है अपने जीवन में डिसिप्लिन को अपनाना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें उसके लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही होती है, लेकिन मन के लिए, मन के साथ बह जाने की जरूरत नहीं होती, मन को बांध कर रखने की जरूरत होती है। जो करना चाहिए, यानी कि अगर आपको किसी समय में काम करना है तो अपने काम के प्रति ईमानदार होते हुए उस काम पर फोकस करने की ज़रूरत होती है, और उसी के साथ आगे बढ़ने के लिए साथ ही साथ पेशेंस भी रखना होता है। मन चाहे कितना ही विचलित क्यों ना हो, लेकिन उसको कंट्रोल में करना होता है, और धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना होता है, मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तभी हम अपने जीवन में एक लंबी छलांग ले पाते हैं।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जैन, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, और हमारे साथ हैं स्टूडियो में तुषार पाठक। तुषार, हम बात कर रहे हैं युवाओं की, उनकी चुनौतियों की। तो क्या कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया है जब आपको लगे कि मैं हार गया, अब क्या करूं, आपका विश्वास कमजोर पड़ने लगा हो, और आपने तब किसका हाथ थामा?

0: किसका दामन थामा और कब आपने ऐसे आपने कैसे उस मुश्किल दौर को पार किया?
1: तो मैं अगर बात करूं पिछले ही साल की, तो कुछ ऐसे हादसे हुए थे कि मुझे भी लगा कि मैं हार गया हूं, अब सब खत्म ही हो गया है। तो अच्छा। मैंने अध्यात्म को चुना, मैंने शिव को चुना, मैंने उनसे मांगा कि बाबा सब ठीक कर दो। तो मुझे पूरे मन से ठानने के बाद, शिव को मानने के बाद, उनसे मांगने के बाद पूर्ण समर्पण मैंने कर दिया शिव को, और उसका परिणाम ये रहा कि मुझे 25 साल की उम्र में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के भव्य दर्शन हुए, मेरा जीवन सुधरा, शिव ने मेरा हाथ थामा, मैंने उनको माना, उन्होंने मुझे अपनाया, और मेरे इसी विश्वास ने मुझे आज पहले से बहुत मजबूत, बहुत ही धैर्य और शांत बनाया।
0: बिल्कुल, जब आप किसी शक्ति में विश्वास करते हैं तो उसमें विश्वास करने के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं अपनी कड़ी मेहनत के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप और मजबूत स्थिति में आ गए हैं और आप सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं, आपके कदम और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और आप उन ऊँचाइयों को पाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं। तो चलिए आपके लिए पेश है ये बहुत ही खूबसूरत गीत, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा।

0: दोस्तों समय हो गया है 4:54 और इसी के साथ हमारा जो आज का ये सफर है वो समाप्ति की ओर है। तो हम हमारे गेस्ट तुषार से बस यही जानना चाहेंगे कि तुषार, जाते जाते आप क्या संदेश हमारे युवा साथियों को देना चाहेंगे?
1: मैं ये कहूँगा कि हम युवा, हम सबको ये याद रखना है कि युवा होना सिर्फ एक उम्र की सीमा नहीं है, बल्कि यह एक सोच है कुछ नया करने की, समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने की और एक बेहतरीन समाज बनाने की। हम सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास की रीढ़ है। जब देश का युवा सही रास्ते पर एक कदम बढ़ाता है तो पूरा राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ता है। जब हमारे इरादे नेक होंगे और हम मेहनत में ईमानदारी से काम करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हमें साथ रहना है, साथ चलना है और देश का विकास करना है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं तुषार, कहीं ना कहीं अपने साथ साथ देश के बारे में भी सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश हमसे है और हम देश से हैं। इसीलिए कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ आगे तो बढ़ना है, लेकिन अपने राष्ट्र के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हमारा देश तरक्की तभी करेगा जब हम तरक्की करेंगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और कहना चाहिए कि चाहे हमारी सफलता के रास्ते में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए तुषार, लेकिन अपने अंदर के आत्मविश्वास को बरकरार रखना है, दृढ़ निश्चय को बनाकर रखना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आप मेहनत से कभी भी आगे बढ़ेंगे ना तो सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा जी।
1: अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन से नहीं हारना है, ठान लीजिए और चल पड़िए अपनी जीत की राह पर।
0: बहुत खूब, तो इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी और तुषार आपको कहेंगे बाय, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि ये सम्मान गोवा पुलिस की समर्पित सेवा, अनुशासन और राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है।

0: राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। ये किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये समारोह तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
1: Ours is a very trusted relationship.
2: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
1: Ratification likely in the coming future.
0: इस अवसर पर श्री जेवियर बैटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह के लिखे एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। इसके लिए मानवीय जुड़ाव, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता जरूरी है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। निदेशालय ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिकता को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
3: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय ने दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं की है। न्यायालय ने बचाव कार्य में तेजी लाने और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सेडान से होगा। वहीं सरिता कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: কাহিনী পঢ়ি আপুনি নিশ্চয় ভাল পায়, উপন্যাস বা গল্পৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিশ্চয় আগ্ৰহ আছে। বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীয়ে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে উপন্যাস পাঠৰ এটি মনোৰম অনুষ্ঠান। প্ৰতি পুৱা 9 বজাত এতিয়াৰ পৰা শুনিবলৈ পাব ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠান। ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠ বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীত প্ৰতি পুৱা 9 বজাত FM এণ্ডৰ 100.8 MHz।
1: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
2: Our voice gets you heard everywhere.
1: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
2: 6900453528।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্ৰ আপোনাৰ সৈতে।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
4: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजयनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
5: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा

0: गांधी जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Defence Acquisition Council today cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. The approval was granted during a meeting of the council held under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh. The proposals include procurement of chemical, biological, radiological and nuclear recce vehicles, advanced light helicopters and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war-fighting capability of fighters, transports and helicopters. The Defence Ministry said that 98% of total procurements will be made from the Indian industry.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্ৰতি বাৰ্তাঃ শ্ৰূয়ন্তাম প্ৰবাচকঃ যতীন শৰ্মা। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गोवायाः पणजी नगरे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदः 28तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति विशिष्ट ध्वज सम्माननं प्रदत्तवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः लक्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान्। उक्तवान् च यत् यदा सम्पूर्णं विश्वम् अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति, तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रिय राजधान्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य 7 यावत् उपागता। दिल्ली नगर

हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लक्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ভজন অনুষ্ঠানত সেয়া আছিল চিত্ৰা ৰয়, আৰু এই ভজনটোৰে সামৰিব লাগিব আমাৰ আজিৰ ভজন অনুষ্ঠানটি। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। কণ্টেক্ট পাছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाए।

0: के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है, उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
3: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही।
7: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण

0: भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
1: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
6: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
7: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और MCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
6: देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ बजट।
1: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों की परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।